केवन किन ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

जीव जंत उस पानी अंदर रहण वाले हन, फिर तेन उन्हों का भार से जरूर व्यापदा होगा। इतनिया नदियां नाले निरंतर चल रहे जिन्हों का कोई अंदाजा नहीं कितना पानी, ते सारा पानी फिर जिस समुद्र च जाके पैंदा उहदा कोई अंदाजा नहीं।

चारे पासे सुगंधी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है, ए ता कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। सत सिमरत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मैता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक हुए है ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नू बिठाया कोल, कालू जी नू मेहता कालू नू कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदो लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मेनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हो। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। सत सचित बोलो श्री। ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी सात सिंगत आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा।

मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखिया के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते देई जांदा है, ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च

लगे निरंकार, जो उपदेश आपने मेनू दिता है ना, ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच, जुगाद विच भी सच, हुण भी सच है ते सच।

0: हे मेरे मन, उस करते पुरख दी आराधना कर। हे मेरे मन, उस करते अकाल पुरख दी उस्तत कर। वड़ियाई कर, कीड़ा करता अकाल पुरख जिन्हें सारा जग बनाए, जिना सब कुछ कर करा रहे ओ करता, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करने योग है, उस करते पुरख दी सलाघा कर। हे मेरे मन, एक मिनट भी उस करते पुरख नू विसारना, याद रख ओ करता पुरख जिसने तेनू संसार ते भेजे है, तू ओदी वड़ियाई विच जुड़ जा, ओदी बेअंतताई विच लग जा।
1: मन मेरे करते नू सलाघा।

दाते नु सला, जिन्नी सारा संसार बनाया ए वस्तुआं बनाई तेरे भोगण वास्ते, इतना कुछ परमात्मा ने तेनु दिता ते तू दी सलागा नहीं कर, तू ओदी उस्तत नहीं करदा। क्यों नहीं करदा भाई? ओदी उस्तत विच जुड़ जा। ईसा पदार्थ तन दौलत उस परमात्मा दे ते बख्शे ने, ये ठीक है तू मेहनत कीती, पर जे परमात्मा शरीर ही ना देंदा इंसान तो की करन जोगा सी? जो कुछ भी कीता है परमात्मा ने कीता है, परमात्मा ने तेनू बनाया ओदे हुक्म अनुसार तू ओदा हुक्म जा रहे। साहिब जी फरमान करदे ने मन में

करो सदा प्रभ अपने मन मेरे करते नू सहलाए। होर वस्तुआं दी बड़ी उस्तत कर दे, ए चीज बड़ी खूबसूरत, ए चीज बड़ी चंगी, ए भोजन बड़ा सोहना बने, बड़ा स्वाद लै, ए वस्तु बड़ी ही अच्छी है, एदे वर्गी संसार ते कोई भी चीज नहीं। होर बड़िया उस्तत कर दे, बड़ा कुछ आखद है, मनुख की भी उस्तत बड़ी कर दे, पर जिदी उस्तत करन योग है उसी कदी कीती ही नहीं, कदी उसनू सलाया ही नहीं कि असली जिहड़ी उस्तत करन वास्ते सी संसार ते आए हां उते कीती नहीं। ऐसा ही सवाल मरदाने दे अगे साहिब गुरु नानक साहिब ने कीता, आखिया मरदाने आ की करन, आखदा साहिब जी लोकां दी उस्तत करन ते अपना घर दा गुजारा चलान, ते साहिब आखन लगे मरदाने आ लोकां दी उस्तत ना कर, आ मैं तेनू अकाल पुरख की उस्तत करनी दसा, अकाल पुरख की उस्तत करिया कर, यह तो उस्तत झूठी है लोगों की करनी, अकाल पुरख की कर, यह सच्ची उस्तत, यह उस्तत करेगा कभी भी भुखा नहीं रहेगा। यह गुरु नानक का वर होए मरदाने, साहबा ने उस्तत दे विच ला दिता, आप भी जुड़ जाते सन ते मरदाने नू भी जोड़ लेंदे सन। चल मरदाने आ बाणी आई आ छेड़ रबाब, कीर्तन विच लीन हो जाना ते अकाल पुरख की उस्तत करनी, ओही जोत सानू उपदेश कर रही है, हे मन अकाल पुरख की उस्तत कर, मन मेरे करते नू सहलाए, उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

निवास जैसे मीन की ना घटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना बिहंग की कटाकन को।

काल पुरुष से यदि अरदास करे मंगदे पियन शुभ कर्म अपने वास्ते में आप तो निरंकारी ज्योत आप तो निरंकार का ही स्वरूप पर दास अकाल पुरुष को किस वास्ते मंग रहे हैं साढ़े वास्ते मंग रहे साढ़े वास्ते ही महान वड्डी दास शुभ कर्मा दे शिवावर मुहे है शुभ कर्मन से कम हूं न करो शुभ कर्मा शुभ कर्म ही सबको बची है बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए विहार निर्मल होना चाहिए परमार्थ का सदा ही निर्मल जिसका विहार पवित्र है विहार सच्चा से सच्चा हो गया उसका जीवन विहार हो रहे दिखावा हो रहे वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन तो शुभ कर्मों की विशेषता है सबसे ज्यादा शुभ कर्मों वाली दुनिया में कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे को शुभ कर्म तो अजकल भी दर्शा असं कलयुगी जीवन के वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हैं देह शिवावर मोए के है ते ये भी कहते हैं कि कलयुग का सतगुरु जी ने शिवजी महाराज की अरदास की सबने शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हू लोग शिवजी कहते हैं असली उसका नाम महादेव सतगुरु जी ने आप फरमाया है महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत न भेद महादेव नु लोग शिव कहते इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला होवे रब की बंदगी करने वाला लोग कहते भई ये तो रब रूप ही क्यों रब नाल जुड़े इसे तरह महादेव नु शिव जी किया जाता है पर असल में शिव नाम अकाल पुरख है उस अकाल पुरख से अगे कलगीधर दशमेश पिता जी ने अरदास की वर मंगे दे शिवा वर मुड़े के है कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े वास तो जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्होंने दुनिया जय जयकार अज मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हों फतेह हासिल हुई धर्म की तज खड़ी कर दी आखो श्री धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां च फतेह प्राप्त नाशवंत पदार्थों नाल प्यार नहीं किया अमर वस्तु जो सी धर्म उसनों अपनाया जिदे कोल धर्म है उदे कोल सब कुछ
धर्म ही सब तो वड्डी गल जिहदे कोल धर्म है भाई उसका जीवन सदा वास्ते सफल धर्म धर्म नाल प्यार की इस नाशवंत शरीर नूं कुर्बान कर समझिया इसने तो बिन सुना इसने तो एक दिन बिन सी जाना है धर्म संगीत धर्म नाल प्यार किया शुभ गुणा नूं ग्रहण किया जो कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने मंग मंगी है फिर बाबा जोरावर सिंह से बाबा फतेह इस तरह शुभ गुणा नूं ग्रहण कर दे सब तो वड्डा शुभ गुण सब तो वड्डा कर्म हजूर प्रबंधन सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल हरि दे नाम नाल प्यार कीता सिमरन नाल प्यार कीता धर्म नूं उच्चा ते सुचा तो आओ प्यारी अज उन्हां महान पवित्र हस्तियां महान व्यक्तियां दी याद जुड़े आओ जो दात मेरे साईं ने मंगी है आओ आपां भी मंगी आपां किस तो मंगी अपने गुरु तो मंगी आखो श्री वाहे असीं गुरु अगे झोलीए क्योंकि साडा इष्ट कलगियां वाला असीं कलगियां वाले दे सिख ओ साडा गुरु गुर परमेश्वर को जा पानी चाहे गुरु ते परमेश्वर फर्क कोई पर अपने इष्ट दे अगे अरदास करिए ते ए मंग मंगी केड़ी जो कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने अकाल पुरख की अरदास की पहले से बोले पिछले सारी संगत

तुर्क दुष्ट सब शह किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे को